0: एक पुरख एक नगर आब है सब एका नगर निहारे हर प्रभु ठाकर व्यास बठाई सब चीरी जगत समारे आप दयाल दया दान देवै जो पाथर की रे कारे
1: फिर हुक्म न करवाए।

0: ठाकुर
1: ज्यो भगत द्रौपदी दुष्टानी हर हर लाज निवारे रहाओ कर कृपा जाचक जन तेरे एक मांगो दान प्यारे सतगुरु की नित श्रद्धा लागी मोको हर गुर मेल पे मेल सवारे त्यागत कर्म पानी ज्यो मती है नित पानी झोल चुलारे मिल सत संगत परम पद पाया कट माखन की गटकारी नित काया मंजन दिया नित मल मल दे सवारे मिल सत गुरु के मन बचन न पाए सब भोगट चार सिंगारी मटक मटक जल सकी सहेली मेरे ठाकर के गुण सारे गुरमुख सेवा मेरे प्रभ पाई मैं सतगुरु आला

0: हर सच्चे सृजन हर नाख पकड़या हर सब जी तुम्हारे जी तू जिया कदा तारा हर त्यावो संतो जी सब दुख विसरण हरा
1: ओ जन्म मरने वार ठाकर
0: हर अपे ठाकुर हर अपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू प्रकट कर।

जिसनो कृपा करे सो त्यावै नित हर जप जप जप हर सुख पावै गुर प्रसादी हर रस आवै जप हर हर पार लंघाई जीउ रहाउ निरभउ निरंकार सतनाम जग मै श्रेष्ठ उत्तम काम

0: कृत
1: कहां बुद्ध प्रव तुच्छ हमारी
0: पीड़े ज्यो कहानी
1: वर्ण सकू महिमा जो तुहारी
0: देखे सुने
1: हम न सकत कर सिफत तुम्हारी
0: जम जम
1: लिहो तुम कथा सुधारी
0: बहुत
1: हम न सकत कर सिफत तुम्हारी
0: जिन
1: आप लिहो तुम कथा सुधारी। वाहिगुरु साहिब जी पौड़ी हौ सदके तिना गुरसिखा सतगुरु नू मिल आप गवाया हौ सदके तिना गुरसिखा कारण उदासी अंदर माया हौ सदके तिना गुरसिखा गुरमत गुरचरणी चित लाया हौ सदके तिना गुरसिखा गुरसिख दे गुरसिख।

0: मेरे जन्मा दे पाप सारे धो गए,
1: तेरे दाते अदार जद हो गए, मेरे जन्मा दे पाप सारे धो गए।
0: कागजे ते मांग दिल साफ है जी उत्ते।

सर्वत्र जाना हे जीव को नरक न जाए उनका जीव को पार ब्रह्म ते आई उनका जीव को सह संग पाई गुरु करदा ने ते जिया दाना है गुरु द्वार है हर कीर्तन सुनिया जत गुरु के रहा जा से लोग बनिया कल के लिए मिठाई नरक है देव है माना है हां वो चलो गुरु तो खाया पुला करो जत गुरु पाया गुरु जीव को का भी ना भक्ति हर पू दड़ाया गेना है उल्टा है धमनी राई दलदल पूरे है वो जाई वो जो हूँ जब एक जमाना मन लगा जय जित आना है गुर मेरे यहाँ जल दर्शन मुझे हई गुर मेरे यहाँ जो है माई जैसे दोग दिया गुरु पूरे नाम अमृत की बनाए गुरु की वाणी समाए समाणी आप सुनी थे आप बगानी दिन दिन जपी कि सब नेत्रे दिन पाया ने चल जाना है जैसे कोई मैं मैं सतपुर जाना है जो कुछ करे जो अपना पान है या तो तू जा चाहे ज्ञान दे रे ना जैसे कोई बनाए मर जुरे मेरा बन भाई है कौन कहर जैसे कोई प्रसाद आनंद में प्रभु मंखारा क्या मैं करता है अपना मर जाए तो चैन नहीं कोई सब उतनी जड़ा पाएगा लाख छुरा जी जो जवाई मान जी को यू कह जो आए जाए तो पाएगा अभी तो बुझे जी जब जाएगा हर कुछ का ना करो ये करे जो या तो वो शरण नहीं है तो यहाँ गुणा तेरे रहे नरारा जो वो करने के चोपा मैं तेरे जो की जाए जो मंदनों पैरे कुर्ता भी

नेचुरल ज्योति जयते आए रा का जीव जो हर जी हा न्यों जाल तरंग उठाए बाबा पाती गर जल्ला जल दुआए दान दुआरे या प्रभा भय तो कर पाता देव दर्श ये का मंत्र प्रदाश है हर कीर्तन में मंडा राजा हरि को धरे फिर वचन आवे आर सो किस घरे ये हर क्या क्षमता पावे पिता लोड़न सोई करायन दर फिर न कोई

पंचदूत ताज तंगन रघुबल दादाजन को कर ले गोपाल कृपा निधान दीन दयाला सखाचारी पूर्ण परमेश्वर नील खदे ना हो भी भंगन मन दान अरब धरी हर आ

तेरा पंगा ना। अजीत में तो ठंडा यार मन की मिट्टी ना जा अरे यार काट लिए प्रभु अपने हमें तो हार जो ठंगना ये तो यार रवैया चुड़ा रवैया तो जिन्हें मुझे प्रभु जो जबकि हम

अगम ओग हरता परम परम परमेश्वरम प्रोष पालम सदा सर्वदा सिद्धाता दयालम अशेदी अपेदी अनाम अकाम समस्तो पराजी समस्तस्ता मुक्तिराजोर चाचरी संजले हैं थले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु हैं आजू हैं आदेश हैं अपेश हैं भुजंग प्रयात छंद अगाध्य अबाध्य आनंदी स्वरूप नमो सर्वमान्य समस्ती निदाने नमस्त्वं नरेनाथे नमस्त्वं प्रमाते नमस्त्वं अगंजे नमस्त्वं अपंजे नमस्त्वं अकाले नमस्त्वं अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राजराजे नमो स्वसाजे नमो स्वसाहि नमो ममाये नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोगे नमो सुख सुखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतं नमो सर्व पीतं नमो सर्व ज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्व मंत्रं नमो सर्व जंत्रं नमो सर्व दृश्यं नमो सर्व कृत्सं नमो सर्व रंगी त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिद्धे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणाशी सदा सर्वदा हृदि सिद्धं निवासी

भक्त अनेक दर्शन की रूप अनेक खेल खेला खेल खेलने अंत को फिर एक देव भेव न जानही। जे वेद और कते रूप रंग न जात पात सो जान नहीं कह जे भक्त आत्मात न जात जाकर जन्म मरण विहीन चक्र बकर फिर चत्र चक मान ही पुर तीन लोक चौदह के विखै जग जाप पी जे जाप आद देव अनाद मूर्त थाप्यो सबै जे थाप परम रूप नीत मूर्त पूर्ण पुरख पावर सर्व स्वरच्यो सुयम पवगण भंजन हार कालहीन कला संजोत काल पुरख आदेश धर्म ताम सु परम रहत भूत अलख अभे संग राग नरंग जा कह जात पात ना नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्तदायक काम महाप्रूप अमीक अन उस्तत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आदि रूप असूत अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरख पार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतिपार सर्वगंता सर्वांता सर्व ते अनपेक सर्वशास्त्र न जानहि जे रूप रंग वर रेख परम वेद पुराण जा कह नेत पाक नेत कोट।

सर्वंगहंता सर्वंगंता सर्वंख्याता सर्वंग्याता सर्वंगहर्ता सर्वंगकर्ता सर्वंग्राण सर्वंग्राण सर्वंगकर्म सर्वंगतर्म सर्वंगयोक्ता सर्वंमुक्ता रसावलशन त्वय प्रसाद। नमो नरकनाशेष देवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्म परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे नृपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते न साकं श्रीके अमितो अमीके सदैवं प्रवाह अजय है अजा है भगवती छंद त्वै प्रसाद। के जा हरजूर है कि हाजर हजूर है हमें सलो सलाम है समस्त कलाम है के साहिब दिमाग है कि हुसनल चिराग है कि कामल करीम है कि राज करीम है कि रोजी दिहंद है कि राज गृहिंद है करीमुल कमाल है कि हुसनल जमाल है गरीमुल खराज है गरीबुल नवाज है हरी फुल शिकन है रासुल फिकन है कलंकम प्रणास है समस्त निवास है अगंजुल गनी में रजाय क्रीम है समस्त जुबा है कि साहिब किरा है कि नरकम प्रणास है बहिस्तुल निवास है कि सर्वुल गवन है हमें सुलर वन है तमाम लुतमीज है समस्त अजीन है परम परमीश है समस्त अधीश है अदे सुलेख है हमे सुलेख है जमीन उल जमा है अमी कुल माँ है करीम उल कमाल है कि जुरत जमाल है कि अचलंग प्रकाश है कि हमें तो सुभाष है कि आजब स्वरूप है कि हमें तो विभूत है कि हमें तो प्रसा है कि आत्म प्रवाह है कि अचलंग अनंग है कि हमें तो अपंग है मध पार शांत वै प्रसाद। मन मन प्रणाम गुण गण मुदाम हर वर गंज हर नर पर गण प्रणाम मन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनुपवनाश मन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जल थल मुदाम अन छेद अंग आसन अपंग उपमा पार गत मित उदार जल थल अमन दस विस्वण जल थल महंत दस विस्वी अंत अनुपवनाश त्रत तरपुरास

अन टुट भंडार ठट अपारा डीठ धर्मत ठीठ कर्म अणब्रण अनंत दाता महंत हर बोल मना शांतवै प्रसाद करुणा लय है अर काल है खल खंडन है मैं मंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कलकार है सर्व उबार है त्रत के तन है जाके कर्ण है मनमानिय है जाग जानिए सर्वं पर है सर्वंकर है सर्व

कृत है धरणी कृत है अमतेश्वर है ब्रह्मेश्वर है अकृता कृत है अमृता अमृत है अजवा कृत है अमृता अमृत है नर नायक है खलकायक है विश्वंतर है करुणालय है नृप नायक है सर्पायक है पंजन है अर्गंजन है रेप तापन है नप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्व आत्म है आत्मवश है जस के जस है पुजंग प्रयात शांत

तत्तं स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलय कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादम विभूते कलंकर रूपे अलंकर अलंके नमो आश्वासे नमो बांक बांके अपंगी स्वरूपे अनंगी नाम मित्र भंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अच्छरी शांत

माते मतंग जरेडर संग अनुपो तंग सुरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन कौ जात निवारे पारी पुजान के पुप पली बेद न्यावत शीस न जात बेचारे एते पहे तो कहा पे पुपत अंत काओ नांगे ही पाए पधारे जीत फिरे सब देश दिसान को बाज टटोल मृदंग नगारे गुंजत गुड़ गजान के सुंदर हंसत ही है राज हजारे पूत पवेख पवान के पूपत कौन।

के धाम से धारे। तीर्थ नान दया दमदान सुसंजम नेम अनेक बिसिख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के पिख है। पौन आहार जति जत तार सबै सुबिचार हजार क देखै श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिनु एक न लिखै। शुद्ध

त्याग जहान निदान चलेंगे। वीर अपार बड़े बरे यार बिचार है सार की तार पछैया तोरत देश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़ी गड़ान के तोड़न हार सुबात नहीं चक चार लवैया साहिब श्री सब

नमस्कार तुसही को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी सिवकन को सबगुन सुख दियो सत्रन को पन मोहबत कियो काट काट के अंतर की जान भले बुरे की पीर पिशान चीटी ते कुंचरे सथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला।

आप अपनी बुद्ध है जेती बरन भिन भिन तोहे तेती तुमरा लखा न जाए पसारा के बिद सजा प्रथम संसारा एकाय रूप अनूप स्वरूपा रंग भयो राव कही भूपा अंड जेर जसे तजकीनी उत्पुज खान बहुर रच दीनी कहूं फूल राजा हुए बैठा कहूं सिमट भयो शंकर कैठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव आदि जुगाद स्वरूप स्वयंपव।

कृपादृष्ट कृपा दृष्ट तन जाहिने हरे हो ताके ताप तन कमहि हरे हो रिद सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाश्व सके न कोई।

जिते अंत पछोताइए सतगुरु का उपदेश सुन तू हो तेरे नाले कह नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले।

कल कोहोर समुद्र में बूढ़त थे, कब हो मिट है नहीं रे पछतायो। तत् विचार जह मथुरा, जग तारन को अवतार बनायो। जपे ओ जिन अर्जुन देव गुरु।

श्री वाहिगुरु जी की फतेह। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक ले त्याए। फिर अंगत गुरते अमरदास रामदासें हुए सहाए। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिय कर नौनद आवै ताए। सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई होए सहाय दसां पातशाह दी जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलो जी वाह। पंजा प्यारियां चौह सब जादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां। जिन्हां तेरा नाम जपिया वंड के छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अंडट कीता। तिन्हां प्यारियां सचियारां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दित्ते बंद बंद कटाए खोपड़े लहाइयां चरखियां दे चढ़े आरे नाल चराए गए। गुरुद्वारियां दी सेवा ले कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसा स्वासा नाल निभाई। तिन्हां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलो जी। पंजां तख्तां अते सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान तरके बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चितावे चितावन का सदका सर्ब सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहेब तहाँ तहाँ रचा रह। देख देख फतेह बिरध की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल वाले बोलो जी। सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिरदान नाम दान। श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग टल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उची मत पाता राखा वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दा तार जियो। श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरद्वारा गुरधाम जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है उन्हां दे खुले दर्शनदार दी सेवा संभाल दान खालसा जी नूं बख्शो। हे निमाणियां दे माण नितानियां दे ताण नेओटियां दी ओट सच्चे पिता वाहिगुरु आप ते हजूर संपूर्ण आसा की वार दे कीर्तन छे पौड़ियां नंद साहिब दे पाठ कीते गए हन। पाठ करदिआं कीर्तन करदिआं अनेकां गलतियां हो गईआं अनजाण बच्चे समझ के माफ करना। अगे तो शुद्ध स्पष्ट अते मन लगा के पाठ करन दे मत बुद्धि बख्शनी वाहिगुरु जी। हुक्मनामा बख्श के निहाल करना जी। वाहिगुरु जी आप जी दे हजूर कड़ा प्रसादी देग हाजर है जी। दर प्रवान करनी भोग लगा के संगत विच वरतौण दी आग्या बख्शनी वाहिगुरु जी। काम क्रोध लोभ मोह हंकार झूठ निंदा ईरख आदि तो बचा के रखना वाहिगुरु जी। अखर वादा घाटा पुलचक माफ करने सरबते कार्ज रास करने। सही प्यारे मेल जना मिलया तेरा नाम चित आवै नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबता भला।

प्रभु कै सिमरन दुख जम नसै, प्रभु कै सिमरन काल पर हरै, प्रभु कै सिमरन दुश्मन टरै। प्रभु सिमरत कज बिघन ना लागै, प्रभु कै सिमरन अंधिन जागै, प्रभु कै सिमरन भौ ना व्यापै, प्रभु कै सिमरन दुख ना संतापै।

सिमरन उदरे मोचा। प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै, प्रभ कै सिमरन सब कि सोजै, प्रभ कै सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभ कै सिमरन पूर्ण आसा। प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृदमाय समाए, प्रभ जी बसै साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। प्रभ को सिमरै से धनवंते, प्रभ को सिमरै से पतवंते, प्रभ को सिमरै से जन प्रवान, प्रभ को सिमरै से पुरख प्रधान। प्रभ को सिमरै से बेमोता जे, प्रभ को सिमरै से सर्व के राजे, प्रभ को सिमरै से सुखवासी, प्रभ को सिमरै सदा अविनाशी।

कै सिमरन सह समानी, प्रभ कै सिमरन ने चलासन, प्रभ कै सिमरन कमल बिगासन, प्रभ कै सिमरन अन झुनकार, सुख प्रभ सिमरन कांत ना पार, सिमरै सेज।

प्रभ सात अष्टपदी। जय मात पिता सुत मीत ना पहाई, मन ओहा नाम तेरा संग सहाई। जय मां भयान दूजम दलै, ते केवल नाम संग तेरा चलै। जय मुश्किल होवै।

अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमृत वख्यान योग अभ्यास करम त्रम क्रिया सगल त्याग बन मदे फ्रिया अनेक प्रकार की बो जतना पुंदान हूँ मैं बो रत्ना शरीर कटाए हूँ मैं कर राती वर्तनेम करे बो पाती।

नाल अष्टपदी रमैया के गुंचेत प्राणी कवन मूलते कवन दिष्टानी जिंतु सास सवार सिगारिया गर्भ अगर मैं जिन्हें उबारिया बार विवस्था तुझे प्यारे दूध पर जोबन भोजन सुख सुध बिरत पयाओ पर साख सैन मुक पयाओ बैठ कुदैन हो निर्गुण गुण कछु ना बूझै बख्श लियो तो नानक सीजै जे प्रसाद तरु पर सुख बसै सुत परात मीत बनता संगत सह जे प्रसाद पीवै शीतल जला सुखदाई पवन पावक कमला।

निभावै। कहाँ बुजारत बुझै डोरा, निस्कैयै तो समझै पोरा। कहाँ बिसन पद गावै, गुंग जतन करै तो भी सुरपंग। कह पिंगुल पर्वत पर पवन नहीं हो तो आ उस गवन। करतार करना मैं दीन बेनती करै, नानक तुमरी कृपा तरै।

तेरी निकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात। जय प्रसाद तेरी पतरै गुर प्रसाद नानक जस कै। जय प्रसाद सुनै करना जय प्रसाद पेखै बिस्मा। जय प्रसाद बोलै अमृत रसना जय प्रसाद सुसै जय बसना। जय प्रसाद असकर चलै जय प्रसाद संपूर्ण पलै। जय प्रसाद परम गत पावै जय प्रसाद सुख सह समावै। स प्रभ त्याग गवर कत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो। जय प्रसाद तू प्रकट संसार तिस प्रभ को मूल ना मनो विसार। जय प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तू ताको जाप। जय प्रसाद तेरे कारज पूरे तिस जान मन सदा जूरे। जय प्रसाद तू पावे साच रे मन मेरे तू ता स्यों राज। जय प्रसाद

होए अष्टपति। ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप, ब्रह्मज्ञानी सदा निर्दोष जैसे सूर सर्प को शोक, ब्रह्मज्ञानी के दृश्यमान जैसे राज रंग को लागे तुल पवान, ब्रह्मज्ञानी के तिरजेक जो बसुदा को खोदै को चंद।

करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल गिरी नाथ अमृत ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सबू परमया ब्रह्म ज्ञानी ते कज बुरा ना भया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदस

और तारै जो अंतर नाम श्रम में पेख भगवान निमक निमक ठाकुर नमस्कार नानक अपरस सगल निस्तार अष्टपदी मिथ्या नाई रसना परस मन में प्रीत निरंजन द्रस पारत्रिय रूपना पेख नेत्र सात की टैल सन संगेत करण ना सुने काऊ की निंदा सब ते जाने आपस को मंदा गुर प्रसाद बिकिया पर रह मन की भासना मन ते टरै इंद्री जित पंच दोख ते रह नानक कोट मदे को ऐसा परस बैसनो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न बिसन की माया ते होए पिन करम करत वह ने क्रम तिस बैसनो का निर्मल धर्म काऊ फल की इच्छा नहीं बाछै केवल भगत कीर्तन संग्राचै मन तन अंतर सिमरन गोपाल सब पर्वत कृपाल आप दृढ़ अवरै नाम जपावै नानको वैष्णो परमगत पावै भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्याग दुष्ट का संग मन ते बिनसै सगला परम कर पूजै सगल पार ब्रह्म।

नानक ऐसा भगोती भगवंत को पावै। सो पंडित जो मन पर बोधै राम नाम आत्म मैं सोधै राम नाम सारस पीवै। उस पंडित के उपदेश जग जीवै।

कई कोट पर द्रव को हिरै, कई कोट पर दुख ना करै, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट पर देश परमाहे, जित जित लाओ तित तित लगना, नानक कृति की जाने कृता रचना, कई कोट सिद्ध जित योगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प पाए, कई कोट पाथर बृख निपजाए, कई कोट पौन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट सस्यर सूर्य नक्षत्र, कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र, सगल समग्री अपने सुतार, नानक जिस जिस पावै तिस तिस निस्तार, कई कोट राजस्थान सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरत रसास्त, कई कोट किए चे, कई कोट कीर्तन समुद, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चिरजीवे, कई कोट गिरमेर सिरवण थीवे, कई कोट जखै किन्नर पिसाच, कई कोट भूत प्रेत सुकर मिर्गाच, सब ते नेर है सभूते दूर, नानक आप अल्प त्रया भरपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुरग निवासी, कई कोट जन्म है जीवै मरै, कई कोट बहु जोनी फिरै, कई कोट बैठत ही खाए, कई कोट काले थक पाए, कई कोट की तनवंत, कई कोट माया में चिंत, जह जय पाणा तै तै राखे, नानक सब किच प्रभ कै हाते, कई कोट पै बैरागी, राम नाम संगति लिव लागी, कई कोट प्रभ को खोजनते, आत्म में पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दसन प्रभ व्यास, तिनको मिलियो प्रभ विनाश, कई कोट मांगै सत्संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको होय आप सुप्रसन्न, नानक ते जन सदा तन तन, कई कोट कहानी अरखंड, कई कोट आकाश ब्रह्मंड, कई कोट होय अवतार, कई जुगत की नो विस्तार, कई बार पसरियो पासार, सदा सदा एक अंकार, कई कोट की ने भोपात, प्रभ ते होय प्रमाय समात, ताकांत ना जाने कोई, आपे आप नानक प्रभ सोय, कई कोट पार्वन के दास, तिन हुआ तातम प्रगास, कई कोट तत के बेते सदा निहारे उक नेत्रे, कई कोट नाम रस पीव है, अमर पय सत सद ही जीव है, कई कोट नाम गुण गाव है, आत्म रस सुख सह समावे, अपने जन को सा समारे, नानक ओए परमेश्वर के प्यारे श्लोक, करण कारण प्रभ एक है, दूसर नाही कोय, नानक तिस बलिहारण जल थल महियल सोय अष्टपदी, करण करावण करने जोग, जो तिस पावै सोई होग, खिन मैं तापुतापन हारा।

अवर पाव सब अमित विसारो, चरण कमल दमहवर तारो, करण कारण सो प्रभ समरत, दृढ़ कर गहो नाम हरवत, हे तन संचवै हो भगवंत, संत जना का निर्मल मंत, एक आस राखो मन माहे, सर्व रोग नानक मिट जाहे, जिस तन को चार कुंट उठतावै, सो तन हर सेवा ते पावै, जिस सुख को नित पाछै मीत, सो सुख साधु संग प्रीत, जिस शोभा को करै भले करनी, सा शोभा बजर की सरणी, अनेक पावी रोग न जाए, रोग मिटै हर अवखद लाए, शर्म निधान में नाम निधान, जप नानक दीर्घय प्रवाण, मन प्रबोध धैर कह नाय, दय दिस तावत आ बैठाए, ताक विघ्न लागै कोए, जाकै हृदय बसैर सोए, कलता तीठांडा हर नाओ, सिमर सिमर सदा सुख पाओ, पौ बिन सह पूर्ण होए आस, भगत पाया तम प्रगास, तित घर जाए बसै वनासी, कौ नानक काटे जम पासी।

संत जना का पेखन सब ब्रह्म, संत जना कै हृदय सब धर्म, संत जना सुनह सुबचन, सर्व व्यापी राम संग्रचन, जिन जाता तिसकी एह रहत, सत वचन साधु सब कहत, जो जो होए सोई सुखमाने, करन करावन हार प्रभ जाने, अंतर बसे बाहर पियोही, नानक दर्शन देख समोही, आप सत किया सब सत, तिस प्रभते सगली उत्पत, तिस पहावै ता करे विस्थार, तिस पहावै ता एक अंकार, अनेक कला लखी नह जाए, जिस पहावै तिस लय मिलाए, कवन निकट कवन कहिए दूर, आपे आप आप भरपूर, अंतर्गत जिस आप जनाए, नानक तिस जनिया बुझाए,